नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, जय माता दी, जय श्री राम। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एडिलेड को 103.1 FM भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन पा रहे हैं www.5bbi.com.au पर। श्रोताओं, आज तारीख है 20 मई और समय हो रहा है 7:30 और बार है बुधवार।

आज का दिन मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वहीं भारत में गरम दल के नेताओं में लाल बाल और पाल ने जो अहिंसावादी विचारों के विरुद्ध जाकर आजादी के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी। आज के दिन पर 1932 में विपिन चंद्र पाल का भी निधन हो गया था।

जहां युद्ध के कारण वैश्विक संकट खड़े हो रखे हैं, कहीं महंगाई, कहीं आने जाने की दिक्कत, तो भारत में आईपीएल के मैचों का लोग अलग ही लुत्फ उठा रहे हैं। कल एक रोमांचक मैच में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल और लखनऊ सुपर जायंट के बीच में हुए मुकाबले में राजस्थान रॉयल ने 225 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें 93 रन 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अकेले ही जड़ दिए। तो वहीं लखनऊ की टीम से मिच मार्श ने भी 96 रनों की अपनी पारी खेली, लेकिन लखनऊ इस मैच को अंततः हार ही गई और श्रृंखला में अभी भी राजस्थान का डगर अभी इतनी आसान नहीं है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भारतीय प्रसारण का ये हिंदी कार्यक्रम, मेरे यानी विनोद बिस के साथ। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं 5 BBI रेडियो की 103.1 FM आकाशवाणी एडिलेड।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे भारत में चल रहे आईपीएल मैचों की। अभी तक जो मैचों की स्थिति है, तो इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है 13 मैच खेलकर 9 विन के साथ 18 अंकों के साथ पहले नंबर पर है। तो वहीं गुजरात टाइटंस 13 मैच खेलकर 8 विन के साथ 16 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। आगे बात करेंगे हम इस गीत के बाद।

श्रोता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एडिलेड को 103.1 FM भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन रहे हैं www.5bbi.com.au पर।

तो हम बात कर रहे थे भारत में चल रहे आईपीएल मैचों की। तो जहां दो टीमें टॉप टू में थी, तो तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद, चौथे स्थान पर राजस्थान रॉयल, पांचवें पर पंजाब किंग्स, छठे पर चेन्नई सुपर किंग्स, सातवें स्थान पर दिल्ली कैपिटल और आठवें स्थान पर कलकत्ता। तो वहीं मुंबई और लखनऊ नौवें और दसवें स्थान पर हैं।

YBBI रेडियो के 103.1 FM पर आप सुन रहे हैं भारतीय प्रसारण का ये हिंदी कार्यक्रम आकाशवाणी मेरे यानी विनोद बिस के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन पा रहे हैं www.ybbi.com.au पर।

श्रोता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एडिलेड को 103.1 एफएम पर भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम। अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, अब अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, विनोद बिस्को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब।